गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा का मना भगवान से योर गुरु पूजा इज योर अनब्रेकेबल आमा योर गुरु पूजा इज योर अनब्रेकेबल आमा यू सी व्हेन यू डू योर गुरुज पूजा इट इज नॉट द गुरु दैट फिजिकल गुरु ब्लेसिंग ब्लेसिंग यू नो इट्स द गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गोइंग स्ट्रेट अप टू भगवान शिव That whole lineage of the gurus is what blesses you when you satisfy the guru, do his puja, and he bless you. There are many kathas, no time to give. On a Guru Purnima day, maybe we'll do that. Those kathas, the importance of the guru, Bhagwan says it here. That is your unbreakable armor. You know the armor that is here, see them, fellas? The metal thing on the chest, and thing? Worshipping your guru is that.

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो

0: How about this one? 1981 Silsila to take us over into 11 o'clock. With Zitram Tadulam and Dulari of the Queens, New York, Cinderella and Bisram de Munisers.
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

मैया क्या खिवैया कन कन में है राम, कन कन में है राम, त्रिभुवन में है राम,

सभी भक्तजन आसन लीजिए। तो वी प्रेज टू ऑल द देवीज एंड देवता थ्रू द मीडियम ऑफ ब्यूटीफुल भागवत सुमिरन। सो वी प्रे टू भगवान श्री गणेश जी, महादेव, भगवान भगवती देवी माता, ऑल द देवीज एंड देवतास थ्रू द ब्यूटीफुल भागवत सुमिरन। सो थिंक ऑफ भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान